इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिए। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you. RJ

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट, देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और

0: स्पेशलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

अस्सलाम वालेकुम आदाब एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों. हर इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन हर लो हाजिर है और जेजूस लेकर शो वास अब जी हम मजेदार शो वास अब.

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम। फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर रेडियो चैनल 90.4 एफएम। आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तर शो वॉस। फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चैनल के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स को, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स पर। साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। याद रखिए, ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल, मैं हूँ जॉक्स, धड़का दे

0: दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम शो का हिस्सा बनने के लिए 8899-04-904 इज द नंबर। 8899-0904-904 तो है क्यों कॉल करी तो व्हाट्सएप या है क्यों करी टेक्स्ट मैसेज तो पानी का तस्ता है बात नहीं है। रेडियो चैनल 90.4 एफएम डेरो सेगमेंट्स और डेरो सेगमेंट्स में मुझे पता है आपको इंतजार रहता है वेदर अपडेट का, तो ब्रदर आइए सुनाया जाए आपको आज का वेदर।
1: रेडियो चैनल वेदर अपडेट।
0: जी हाँ, मौसम सुहाना लगता है, दिल दिमाना लगता है, ऐसा ही कुछ होगा हम दम और ऐसा ही कुछ होने वाला है, बिकॉज पूरी दुनिया जहाँ हीट वेव से गुजर रही है, कश्मीर में सर्दी है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। जी हाँ, रेडियो चैनल 90.4 एफएम वेदर अपडेट, आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस।

Texas, and it's partly cloudy for today. बादल आज भी गेड़ियां मारेंगे, सूरज को छिपाएंगे और गरज बरस की भी संभावना है. That means, बादल क्यों गरजेगा, दिल क्यों तड़पेगा भैया, ये तो पता चल ही जाएगा कि बरसेगा कि नहीं. बट हमारा वेदर बता रहा है कि बादल बरसने के पूरे चांसेस हैं, पूरा का पूरा. अभी के लिए यूवी इंडेक्स मॉडरेट पर, ह्यूमिडिटी 63%, विंड स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, विजिबिलिटी 14 किलोमीटर. आज का सनराइज हुआ 5:21 पर, आज का सनसेट होगा 7:47 पर. और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन याद रखिए, 8999-04904 इज द नंबर जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है. वाओ, हर दिल की धड़कन को जोर से धड़काओ. मैं हूं चॉक्सिस, मेरी जान से डायरेक्ट धड़काते रहो.

Yes.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Zeus. कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
2: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप
3: रिटर्न 90.4 FM अब जो वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा. जी हाँ, वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर जो वायरल होता है व्हाट्सएप पर आ ही जाता है. वायरल ऑन व्हाट्सएप में ये बात करते हैं कुछ लोगों की जिन्होंने फेयरलेसनेस दिखाई, ब्रेवरी दिखाई और एक इंसान की जान बचाई. इंटरनेट पर वायरल रहा ये वीडियो जहां पर कुछ लोग हमें दिखे ह्यूमन चेन बनाते हुए, क्योंकि फ्लड्स में एक बंदा फंस चुका था. उन्होंने चेन बनाई, ह्यूमन चेन बनाई और बंदे को उस फ्लड से बाहर निकाला. अब इंटरनेट पर जगह तो ब्रीफ नहीं रही, बट ये रहा कि इस ब्रेवरी को सराहा सबने, इस ब्रेवरी को प्यार दिया सबने और इंटरनेट पर फ्लड आ गया कि ऐसा प्यार, ऐसी ब्रेवरी सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलती है. और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM. जी हाँ, सिटी हिट लड़काते रहो.

0: मैं हूँ आरजे सूरज।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: दोस्तों, हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है, बी काइंड टू अनकाइंड पीपल, दे नीड इट द मोस्ट। रेडियो चिनार की हार्डेस्ट फ्रीक्वेंसी पर जॉक्स ज्यूस के साथ।

0: to Zeus. Going out.
1: Zeus.
2: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो इतना 90.4 FM मस्तार शो वाज़ब और शो वाज़ब का हिस्सा बने हैं जावेद। लिखते हैं जावेद सर, पहली बार मैसेज कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ शो में शामिल जरूर करेंगे। अरे करेंगे, जरूर करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। आप ही तो है हमारा सहारा, रेडियो चुनार तभी तो है सबसे प्यारा, क्योंकि इसे आपने है निहारा। तो मेरे यारा जावेद का कहना है कि रेडियो चुनार अच्छा लगता है, और रिसेंटली जो वीडियो आपने अपलोड किया था जहां पर आप कॉलेज में गए थे, सर मुझे कॉलेज तो याद है लेकिन स्टेज पर जाने से मुझे बहुत घबराहट सी होती थी, आज भी होती है, लेकिन जब आप लोगों को देखता हूँ स्टेज पर चढ़कर बातें करते हुए, डांस करते हुए, लोगों को मोटिवेट करते हुए, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच जावेद। और स्टेज का ये है कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू हेयर अबाउट रेडियो चुनार को, अगर आप फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो हमारा नेक्स्ट जो इवेंट वगैरह होगा वहाँ पर आप आ सकते हैं, और वहाँ पर आकर हम आपको मौका देंगे, आप स्टेज पर आए अपने फेयर को दूर बगाए। सो थैंक यू सो मच जावेद हमसे जुड़ने के लिए। सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मतलब ये कहना है साइका का, साइका लिख दिया, सर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे गाना सुनना है। देखो बेटा, गाना सुनना है तो म्यूजिक ऑन डिमांड हमारा एक सेक्शन चलता है जहाँ पर आप गाना सुन भी सकते हैं और सबको सुना भी सकते हैं और अपनी बात जो है सब तक पहुँचा भी सकते हैं, क्योंकि म्यूजिक ऑन डिमांड पर्टिकुलर एक ऐसा सेक्शन है जो आरजे दीवा आप तक लेकर आती है और जहाँ पर आप रिक्वेस्ट सॉन्ग सुन पाते हैं। थैंक यू सो मच। 8899904904 इज द नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज करके अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। रेडियो चुनार पर हिस्सा लेने के लिए आप डीएम भी कर सकते हैं ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो, मिलूंगा इंस्टाग्राम पर, आप सर्च कर सकते हैं जॉक ज्यूस भी, JOCKXEUS। व्हाट्सएप शो और व्हाट्सएप शो में आज का टॉपिक वर्ड्स एंड एनर्जीज। अक्सर आपने सुना होगा हता यमवान पानस गलत इम्पैक्ट पे, एंड इट्स सेड बाय ब्रूस ली दैट जब भी हम कोई बात बोलते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे दिलो दिमाग, हमारी रूह, हमारे जिस्म, हमारी जिंदगी पर

होता है, बिकॉज स्पेलिंग, सो स्पेल वर्ड्स में मैजिक होता है, एनर्जीज होती है, और जब आप कुछ अच्छा बोलते हैं तो अच्छा होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो सेल्फ टॉक करते हैं किसी भी इवेंट से पहले, खुद को ये बोलते हैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और वो बेस्ट करते हैं अपने लिए भी, अपने देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी। कैसे वर्ड्स एंड एनर्जीज इंसान को इफेक्ट करते हैं और किस तरह से वर्ड्स बाइंड होते हैं एनर्जीज के साथ, आज हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए जैस्मीन का ये लवली सा ट्रैक आप सभी लवली पीपल्स के लिए, लवली पीपल्स स्टे हुक्ड टू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो चुनाव 90.4 FM। मैंने कहा मस्जिद धड़का।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: जन्म खामोशियां
1: खामोशियां जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
2: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे
1: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
2: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
1: सुनिए रेडियो गर्ल अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
2: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे
1: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

दोस्तों, रेडियो चला 90.4 पर आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप। व्हाट्सएप शो में आज बात हो रही है वर्ड्स एंड एनर्जीज की। आप भी शो का हिस्सा बने। 8888-9904904 इज द नंबर। हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी पर मैं हूं जॉक्सी, उससे हक्त धड़काते रहो।

0: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।
1: रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप। व्हाट्सएप शो में अगली पेशकश टिकटॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज। टेक वर्ल्ड से एक अपडेट और साथ ही साथ बॉलीवुड से तरक्की फड़कती खबरें। जरा सा इंतजार, देते रहे प्यार हर दिल की धड़कन को, धड़काते रहो मेरे यार।

0: कौन आया?
1: बॉलीवुड न्यूज़, बॉलीवुड न्यूज़, बॉलीवुड न्यूज़, बॉलीवुड न्यूज़,
2: बॉलीवुड न्यूज़। दोस्तों रेडियो चुनाव 90.4 एफएम मजेदार शो, व्हाट्सअप शो का सेगमेंट बॉलीवुड न्यूज़। जी हाँ, बॉलीवुड न्यूज में आइए बात करते हैं इम्तियाज अली की लेटेस्ट फीचर स्टारिंग दिलजीत दोसांझ, मैं वापस आऊंगा। 24 करोड़ का माइलस्टोन और 10वां दिन कर चुकी है पार इम्तियाज अली की मूवी फीचरिंग दिलजीत दोसांझ।

ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: जी हाँ, काला चश्मा पहन के अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर ड्राइविंग विद सेफ्टी एंड सेंसेस। दिस इज जॉक्स साइनिंग अप फॉर द डे। इसी ट्रैक के साथ आज के लिए इजाजत, और जदीबा कुछ ही देर बाद आपसे जुड़ेगी लेकर शो चुनार बी। एंजॉय करने वाले आप रेडियो चुनार की हॉट फ्रीक्वेंसी पर बीट साउंड रिपीट, रेडियो चुनार 90.4 एफएम। अंटिल वी मीट अगेन, कीप योर हेड्स हाई, वॉक टॉल, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट आई लव यू ऑल।
1: आरजे ज़ूस ऑन द माइक।
0: बाय बाय, टाटा, टेक केयर, खुशबाश, मासलामा।

0: हाय, मैं हूँ आर्चिज्यूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम।
1: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना

गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

91.4 रेडियो चनार पर आगाज हो चुका है शो चनार 20 का 12 बजे, लेकिन ये सारी बातें तो अब स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि आमी आमी तो पिंचर शुरू हुए हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: only on Radio Chennai 90.4.
1: I feel good.
0: A new vibe for the lovers of Western music with me, RJ Zeus.
2: मैं हूं RJ Zeus. जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
3: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats ve Darje Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: मेरे साथ खुशी को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता, सो उससे पहले ही एंड ऑफ स्टोरी।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

दोनों बेकरार हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हंगामा, ड्रामा, एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन और क्या बजिंग है, उसके साथ साथ लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच जो कहीं और नहीं मिलता। अरे प्यार नहीं होता तो वापस क्यों आती, वादा किया था ना सैटरडे को कि वापस आऊंगी करने आप सबको एंटरटेन और आप सबसे बातें करने को, और शो शुरू हो चुका है हंगामा जहां ड्रामा है, बहुत कुछ है इस इमोशन में, ड्रामा है और क्या क्या है यहाँ वो तो आपको पता चलेगा बराबर चार तक, और आते आते ही प्ले होता है कुछ खास कुछ क्रेजी। गुड लक चार्म, और देखिए मेरा गुड लक चार्म तो आप हैं, और ये गाना 10 साल पुराना है, 10 साल से ये अपना गुड लक चार्म जो है बिखेर रहा है और अब ही भी लोग इसे पसंद करते हैं। गाने का नाम है गुड लक चार्म और अमन है हायर का ये गाया हुआ है। एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM। मैं बस यूं गई और यूं वापस आई।

0: 90.4 FM.
1: Welcome back to Show Hangama, only on Radio Sonar 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन. जी हाँ, हंगामा जो कि अभी फ्रेश शुरू हुआ है और अभी हम बात करने जा रहे हैं कि क्या है ट्रेंडिंग, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, कौन सी रील, कौन सी मीम लोग रीपोस्ट कर रहे हैं, लिप सिंकिंग हो रही है, डांस रील्स बन रहे हैं और मिलियंस में व्यूज छाप रही है कंपनीज. And once again on the billboard, there is Karan Aujla with his track 5-7. जहाँ करण औजला जी को बस जिंदगी में 5-6 चीजें चाहिए, 5-7 चीजें चाहिए, बट ये है कि मुझे ऐसा लगता है सिर्फ करण औजला नहीं, हम सबकी जिंदगी में अगर 5-7 चीजें जो हमारी पर्सनलाइज हो, यानी कि हम हमारे माँ बाप खुश हो, हम खुश हो, हमारे पार्टनर खुश हो, पैसे सही हो, लाइफ अच्छी हो, तो बस और क्या ही चाहिए. और क्या चाहिए वो तो आप बताएंगे. 8899904904 नंबर. एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

देखिए हमारी भी मन्नत यही है कि आप तक हम पहुंचाएं रेलवे अपडेट। और आज की अपडेट ये है कि आज सुबह कुछ ऐसी ट्रेन्स थी, स्पेशली 9 बजे 10 बजे वाली, जो एक्चुअली बानिहाल टू बारामूला जा रही थी, तो वो काफ़ी डिले हो गई थी एज पर द शेड्यूल। नहीं थी, मतलब थी बट नहीं थी, और क्या हो रहा था वो मैं आपको बताऊंगी। There was some technical fault at Kakapura station and वहाँ पे ट्रेन को चेक किया जा रहा था ताकि सबकी सेफ्टी रहे और कुछ भी कॉम्प्रोमाइज ना हो।

0: एंड मोर ओवर, अब अगर आपको और भी अपडेट्स जरूरत हैं या आप चाहते हैं कि आप अपडेटेड रहे, जो कि सबको चाहिए कि सब अपडेटेड रहे, 8899249904 इज नंबर, आप हमें भी कॉल कर सकते हैं. एंड आप रेल वन ऑफिशियल ऐप पे ट्रेन्स बिटवीन स्टेशंस से लेकर कौन सी ट्रेन कहाँ है, लाइव लोकेशन सब कुछ पता चलता है रेल वन ऐप में.
1: मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: big. Only on Radio Chinar 90.4. I feel good. A new vibe for the lovers of Western music with me, RJ Zeus.
1: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
2: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम। ये है हर दिल की धड़कन। जैसे कि आज हम न्यू एज इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं कि इंडिया में भाई क्या नया है, चाहे वो फाइनेंशियल रेवोल्यूशन हो, डिजिटल रेवोल्यूशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर या कनेक्टिविटी हो, या मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट हो, या टेक्नोलॉजी हो, गवर्नेंस हो, फॉर्मुलेशन हो, क्या क्या नहीं है इंडिया में। पर देखिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात तो हम करेंगे ही, पर अभी दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर दैट यू कैन बी द पार्ट ऑफ द शो। 8899049904 इज द नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार

हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम। हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: जानम। खामोशियां खामोशियां जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे,
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं।
1: अरेस्ट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द ड्रग क्राइसिस दैट हैज बीन प्लेगिंग फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स।

जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्दी।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: सो उससे पहले ही एंड ऑफ स्टोरी।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कॉपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे ज़ियूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
0: चुनार बीट्स विद हर्षदीप ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM।

0: ਕਾਰ ਚਲਿਆ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਾਰ ਚਲੀਏ
1: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा चल अपना चला चल अपना चला जल ले
2: करो अपने दिल की बात मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM हर दिल की धड़कन

मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
3: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: सुहानी शाम।
1: तभी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4 FM।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: एफएम।
3: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
0: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

बिन तेरे जिंदगी से शिकायत क्यों करूं भला, गिला तो तब होता जब तू साथ होकर भी पास नहीं होता।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

गिना जाता था भले लोगों में, सुना जाऊं ऐसी जुबान था, आपसे क्या कहूं, दिल टूटने से पहले मैं भी इंसान था।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: दे।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लो तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लो तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

Thank you.

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए। सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे, किनारे पे आके

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: マネーカ
1: ー。वो आ गया, देखो, देखो वो आ गया।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको दांत कुछ नहीं कहते, मगर

दिन, चैन, आराम, रातें, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं, देखो ना दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बार लेकिन एक बार।

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।
2: सा सा रे ग म प म ग म प प म रे

0: ओ सवरिया होय होय ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया होय ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, हो गोरी, हो नटखट, हो खटपट, हो पनघट।

0: अब तुम्हारा नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, तारा रा रा रा। जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

धीरे धीरे मैंने खींचा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: रहा यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की
2: और रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।